दिल तो निकली आवाज़ जदों हवावां च घुल जावे फिर रेडियो सिर्फ सुनिया नहीं महसूस भी किया जाता है। सत श्री अकाल जी सारयां नूं, मैं तनुवीर स्वागत करदी हाँ तुहाडा सांझी आवाज़ रेडियो दे चैनल ते, ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम सत श्री अकाल मैलबर्न 88.9 WinFM ते। रेडियो सिर्फ आवाज़ नहीं, एक एहसास हुंदा है ते असी आ गए हाँ तुहाडे नाल वादे मुताबक दो घंटियां दी सांझ पौण जिस विच असी करांगे कुछ अपने दिल दीआं गल्लां ते कुछ तुहाडे दिल दीआं गल्लां ते इन्हां गल्लां नूं असी अहसासां दे खंभ लावांगे सोहणे सोहणे मिठे मिठे प्यारे प्यारे गीतां दे नाल। तां फिर तैयार हो तुसी वी सोमवार दी दौड़ नूं थोड़ा प्यार थोड़ी मस्ती ते थोड़ियां जिहियां रूहानी वाइब्स देण लई, क्योंकि जद तक असी तुहाडे नाल आ तुहाडा दिन सोहना बनाउण दी जिम्मेवारी साडी है। पर हमेशा दी तरह असी प्रोग्राम दी शुरुआत करांगे एक बहुत ही सोहणे शब्द दे नाल। सुणदे आ शब्द ते फिर वापस आवांगे स्टूडियो दे विच।

0: शादी कर सकते हैं।
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह?
0: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी, मलिका तिल फरेब।